दोस्तों, जिंदगी हमेशा तेज भागने वालों को नहीं, बल्कि कभी कभी रुक कर मुस्कुराने वालों को भी मंजिल देती है। तो आज आप खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपनी खुशी को टालना बंद करेंगे और अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से एंजॉय करेंगे।

अगर किसी बात ने आपको अंदर से परेशान किया है तो उस बात को आज की सुबह में ही भूल जाइए, क्योंकि कुछ बातें भूल जाना ही बेहतर होता है सभी के लिए।

दोस्तों, ये जो सुबह की ठंडी हवा है ना, ये सिर्फ मौसम नहीं बदलती बल्कि सोच भी बदल देती है। और जब सोच बदलती है तब पूरी दुनिया नई लगने लगती है।

हो सकता है कि अभी सब कुछ परफेक्ट ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि आप अब भी कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करने वाले लोग कभी हारते नहीं, बस सीखते जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं।

दोस्तों, तो इस नए दिन का स्वागत एक हल्की सी मुस्कान के साथ कीजिए, और मैं तो कहता हूं कि खिलखिला कर कीजिए, क्योंकि सुबह सिर्फ सूरज नहीं लाती बल्कि अपने साथ लाती है एक और मौका बेहतर बनने का और बेहतर जीने का।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि तदनुसार 13 मई 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि

0: एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test on NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for investigation in the matter. The NEET UG 2026 examination was conducted by the National Testing Agency on 3rd of this month. In this case, Special Operations Group of the Rajasthan Police has so far detained 15 people. The Special Operations Group yesterday detained an alleged mastermind identified as

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, और मैं हूँ आपके साथ आरजी रवली बेल्स। 3 o'clock में वक्त हुआ है 10:06। तो बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, और बहुत सारी म्यूज़िक है जिसके साथ हमारा शो जो है वो आगे बढ़ता रहता है। और म्यूज़िक और आपका रिश्ता हमारे साथ ऐसे बना हुआ है कि दोनों एक दूसरे के बिना अलग नहीं हो सकते। तो एक पॉजिटिव कोट के साथ जो है हम इस आवर को स्टार्ट करते हैं कि ये है कि दैट एवरी न्यू डे इज़ अनदर चांस टू शाइन, ग्रो एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी वेयर एवर यू गो। सो आज के हर दिन को हम या हर पल को एंजॉय करते हैं। सो लेट्स मेक टुडे अमेजिंग टुगेदर। कमिंग अप फर्स्ट ट्रैक फ्रॉम द मूवी वेक अप सिड। एंजॉय दिस वन।

0: ರೇನ್ಬೋ 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब और मैं हूँ आपके साथ आरजी रफली। तो दोस्तों, अगर हम मौसम की बात करें तो जैसे हम न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं कि नो टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं और नो गर्म हवाएं भी चल रही है और इसीलिए हमें कहा भी जा रहा है कि इंडोर्स में ही रहिए और बाहर निकलना है तो शाम के 4 बजे के बाद बाहर निकलिए, एंड अनलेस एंड अनटिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट फ्रॉम 10 AM टू 4 PM बाहर ना निकले, इंडोर्स ही रहे, अच्छा खाना खाए, हाइड्रेटेड रहे। तो क्यों मौसम की बात हो रही है, मतलब गर्मी का मौसम है तो ऑब्वियसली गर्म होगा ही, राइट? बट गर्मी ने अगर ना आपका मूड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी ऑफ कर दिया है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज हम अगले कुछ मिनट्स बात करने वाले हैं समर के बारे में। और समर के बारे में चलते चलते बात होती है समर फैशन की, कलर्स की और कंफर्ट की। मतलब सच बोलो, समर सीजन आते ही सबसे पहला थॉट यही आता है, यार कितनी गर्मी है, एंड ऑन अ सेकेंड थॉट वी आर लाइक व्हाट डू वी वेयर, अब क्या पहना जाए टू सूट द वेदर एंड ऑल, राइट? क्योंकि समर्स में फैशन और कंफर्ट के बीच एक फुल ऑन बैटल चलती है। अगर स्टाइलिश आउटफिट पहनो तो गर्मी लगती है, और अगर सिर्फ कंफर्ट चूज करो तो कभी कभी लगता है थोड़ा और स्टाइलिश शायद हो सकता है। तो ये बैटल जो है इट्स लाइक नेवर एंडिंग, और पूरे समर सीजन ये हमारा चलता ही रहता है। बट और भी हम बात करेंगे विद रिगार्ड टू समर फैशन एंड कलर्स के बारे में, तो स्टे ट्यून्ड विद दैट।

Welcome back. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 एंड हियर वी टॉकिंग अबाउट समर एंड विद इट्स कम्स फैशन कलर्स एंड कम्फर्ट्स आल्सो बट ऑनेस्टली समर फैशन इज मोस्ट फन ऑफ ऑल राइट यू नो यू कैन ट्राई ब्राइट कलर्स कूल फैब्रिक्स सनग्लासेस कम्फी शूज एवरीथिंग जस्ट फील्स फ्रेशर हैप्पियर एंड इन विंटर्स यू स्टाइल मोस्टली गेट्स यू नो हिडन अंडर द जैकेट्स बट Summers are all about expressing yourself. And when we talk about colors, summer, you know, has its own special vibe, like white color. The color white instantly, you know, gives us the cool and classy vibes, right? Whether it's just a white t-shirt or a simple kurta or a shirt, it has the charm of its own. And in sunlight,

इट्स लुक सो फ्रेश एंड स्टाइलिश। तो समर की बात ही अलग है ना, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो ब्राइट कलर्स होते हैं वो और निखर के आते हैं सनलाइट के दौरान, और हर जगह जो है थोड़ी बहुत वो फ्रेशनेस लगती है और ओपन सा लगता है, फ्रेश और स्टाइलिश। हम ब्राइट कलर्स को ट्राई कर सकते हैं इस मौसम में, राइट, थोड़े मेलाटोन कलर्स को अवॉइड करके। तो कलर्स के साथ जो है बहुत हम खेल सकते हैं, एंड कई बार सिंपल वाइट कलर भी अपना चार्म ऐड करता है इस मौसम में। तो अगला गाना सुनिएगा एंड स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9।

हम बात कर रहे हैं समर फैशन और कलर्स की। तो जैसे हमने बात किया कलर वाइट की, जो इंस्टेंटली हमें कूल और क्लासी वाइब्स देता है और सनलाइट में काफ़ी फ्रेश और स्टाइलिश भी लगता है। तो फिर आता है वही पेस्टल शेड्स का मैजिक, मतलब बेबी पिंक हो, मिंट ग्रीन हो, लैवेंडर या स्काई ब्लू, ये कलर्स जो है लिटरली मूड को काम कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे गर्मी जो है थोड़ी कम हो गई है। वैसे एक फनी थिंग नोटिस की है कि समर्स में ब्राइट येलो या ऑरेंज पहनो तो ऑटोमेटिकली जो है एनर्जी लगता है मानो डबल हो जाती है। मतलब आउटफिट ही बोल रहा है कि आज का मूड हैप्पी है। और एक साइड पे होते हैं वो लोग जो पूरी गर्मी में भी ब्लैक पहनते हैं, मतलब रिस्पेक्ट है उनकी कॉन्फिडेंस को, क्योंकि धूप में ब्लैक पहनकर बाहर जाना इज़ बेसिकली अ सुपर पावर, राइट? सो एनीवे, कमिंग अप नेक्स्ट सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9, जहाँ पे बात हो रही है समर सीजन की और उसके साथ जुड़ी हुई फैशन की और कलर्स की गेम की। तो अगर वैसे फैशन एक्सपर्ट्स जो भी बोले, रियल समर हीरो होता है वो कॉटन, राइट? कॉटन शर्ट्स, ओवर साइज टी शर्ट्स, लूज कुर्तीज और एरी ड्रेसेस, वो प्योर कम्फर्ट है वो, है ना? और अगर घर पे जो ओल्डेस्ट ओवर साइज टी शर्ट होती है वो एक्चुअली समर लग्जरी मानी जाती है। और समर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत सारे लोग उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से शॉप करते हैं और अपने पास जो है बहुत इंटरेस्टिंगली या बहुत दिल से चाहते हैं कि वो एक्सेसरी उनके पास हो, और वो है सनग्लासेस। जी हाँ, सनलाइट चाहे हो ना हो, सनग्लासेस पहनते ही जो है वो कॉन्फिडेंस का लेवल जो है एकदम और बढ़ जाता है, राइट? रोड क्रॉस कर भी रहे हो तो भी लगता है कि स्लो मोशन एंट्री चल रहा है, जस्ट बिकॉज वी हैड दैट पेयर ऑफ सनग्लासेस, राइट? तो वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस हमारे लिए बूस्ट कर देता है। तो कपड़ों की बात हो गई तो समर में फिर फुटवे की बात भी करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद में हम बात करेंगे। अगला गाना सुनिए आप, फिल्म साथिया मूवी से सोनू निगम का गाया हुआ ये गीत, एंजॉय दिस ट्रैक।

ऑलराइट, तो इस गाने से पहले जैसे हमने कहा कि समर्स में अगर हम कपड़ों की बात कर रहे हैं, ब्राइट कलर्स की बात कर रहे हैं, तो कैसे हम पीछे छोड़ सकते हैं समर की फुटवेयर, क्योंकि यू नो समर में फुटवेयर भी चेंज हो जाता है, लाइक हैवी शूज़ साइड में हो जाते हैं और स्लाइडर्स, फ्लोटर्स, कम्फी स्नीकर्स जो है वो पहले फ्रंट रो में आ जाते हैं, क्योंकि इस वेदर में फीट भी बोलते हैं कि प्लीज़ हमें भी इस वेदर में थोड़ी हवा तो चाहिए, तो वी ऑफर कंफर्टेबल शूज ओवर द यू नो हैवी शूज दैट वी वेयर नॉर्मली. वैसे लगता है कि कलर्स का डायरेक्ट कनेक्शन होता है मूड से, राइट? कभी कभी अगर मूड ऑफ होना और आप ब्राइट कलर पहन लो तो जेन्युइनली थोड़ा बेटर फील होता है, लाइक रेड कॉन्फिडेंस देता है, ब्लू थोड़ा काम फील करवाता है और ग्रीन फ्रेश लगता है. मतलब फैशन सिर्फ दिखने के लिए नहीं होता, फील करने के लिए भी होता है, इतना ही इम्पोर्टेंट है. और इंडियन समर्स का फैशन तो नेक्स्ट लेवल रिलेटेबल है. मतलब सुबह घर से परफेक्टली रेडी होकर निकलते हैं और

और ग्रीन फ्रेश लगता है। मतलब फैशन सिर्फ दिखने के लिए नहीं होता, फील करने के लिए भी होता है, इतना ही इम्पोर्टेंट है। और इंडियन समर्स का फैशन तो नेक्स्ट लेवल रिलेटेबल है। मतलब सुबह घर से परफेक्टली रेडी होके निकलते हैं और फिर थोड़ी देर बाद गर्मी ऐसी वेलकम करती है कि हेयर स्टाइल हो या फ्रेशनेस दोनों बाय बाय बोल देते हैं बस कुछ ही समय में। एंड स्पेशली आफ्टरनून में, मतलब हेयर सेट हो या बाल सेट करना हो, ये सब कुछ हमें भूल जाना होता है, सब नेचर के हवाले हम छोड़ देते हैं। तो इसीलिए समर्स में सिंपल एंड कंफर्टेबल ही बेस्ट पॉलिसी माना जाता है, राइट? इन क्लोथ्स या फुटवेयर या हमारा मेकअप या हेयर सेटिंग, तो सब कुछ अगर हम सिंपल रखें तो इस वेदर के लिए थोड़ा वो हमारे लिए यू नो ब्रीथेबल लगेगा। आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब और मैं हूँ आपके साथ आरजे रवली।

0: FM Rainbow 101.9।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, और मैं हूं आपके साथ आरजी रफली, जहां पे हम बात कर रहे हैं समर के बारे में और कैसे समर में मैटर करते हैं कुछ कलर्स और ब्राइट कलर के साथ कैसे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और कैसे पेस्टल कलर के साथ भी यू नो हम थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर यू नो कम्फर्टनेस के हिसाब से, और कैसे सनग्लासेस जो है पहनते ही एक कॉन्फिडेंस की लेवल जो है वो और एक लेवल आगे हो जाती है। तो वैसे ही कपड़ों के साथ फुटवेयर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है इस सीज़न में, राइट? और समर्स का जो फैशन है सिर्फ क्लोथ्स तक लिमिटेड नहीं है, मतलब कूल ड्रिंक्स का कलर भी मैटर करता है भाई, क्योंकि ब्राइट मैंगो शेक हो या पिंक रोज मिल्क, फ्रेश लाइम सोडा, सब कुछ एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है। मतलब सोशल मीडिया भी ऑटोमेटिकली कलरफुल हो जाती है, और वेकेशंस, समर वेकेशंस का फैशन अलग ही होता है, राइट? बीच आउटफिट्स, कैप्स, फ्लोरल शर्ट्स, इवन नॉर्मल भी पीपल भी ट्रैवल मोड में फैशन इन्फ्लुएंस बढ़ जाते हैं, और घर पे एक साइड एसी चल रहा होता है और दूसरी साइड कोई बोलता है मतलब इतनी गर्मी नहीं है, वी कैन मैनेज, राइट? मतलब ऑनेस्टली उनकी शायद टॉलरेंस लेवल्स कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट होती होगी यू नो बाकी सबसे, कि इस गर्मी में भी उन्हें शायद उतनी गर्मी नहीं लग रही, मतलब थोड़े लोग होते हैं वैसे, राइट? और वैसे हाइड्रेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस मौसम में गाइस, है ना? क्योंकि स्टाइल इम्पॉर्टेंट है बट हेल्थ उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पानी पीते रहिए, लाइट्स क्लोथ्स आप पहन सकते हैं और ख़ुद को फ्रेश रख सकते हैं इन ड्यूरिंग दिस समर सीजन, एंड जस्ट कीप अ थॉट इन योर माइंड ऑलवेज दैट फैशन कैन बी एक्सपेंसिव, होने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन वेयर सिंपल क्लोथ्स एंड स्टिल लुक फैशनेबल एट योर, और यू नो स्टाइलिंग आपके ऊपर निर्भर करती है, आपको से कितना सिंपल आउटफिट भी कभी कभी एक अच्छी एनर्जी ले आती है आपके साथ, और वो काफ़ी होती है किसी के दिन को या आपके दिन को ब्राइटन अप करने के लिए। तो आज का मिशन जो है काफ़ी सिंपल है ना, कि लाइट रहो, ब्राइट रहो और अपने स्टाइल में कंफर्टेबल रहो, क्योंकि

कि आप कंफर्टेबल हो वो ज़्यादा मायने रखता है ना। और अगर आज आपने कोई ब्राइट या हैप्पी कलर पहना है तो कंग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी इस सनी डे को और ब्यूटीफुल बना रहे हो। तो चलिए दोस्तों, आप मूड को और कलरफुल बनाते हैं कुछ अमेजिंग म्यूजिक के साथ, स्टे ट्यून्ड। और क्योंकि और भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो है कंटिन्यू होते रहेगा यहाँ पे, आप सुनते रहिए FM Rainbow 101.9।

स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 10:59 एंड 20 सेकेंड, सबसे कुछ ही देर में 11 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइन। स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, ओनली ऑन आकाशवाणी FM रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजी रफली। वेल, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा रिलेटेबल भी है और थोड़ा पर्सनल भी है। कई बार हम बात करने वाले हैं फोमो वर्सेस जोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट वर्सेस द जॉय ऑफ मिसिंग आउट के बारे में। सो ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग हम सब ने कभी ना कभी फील किया है, फोमो। और उसका थोड़ा कामर या एक कूलर कजन कह सकते हैं वो है जोमो, विच इज जॉय ऑफ मिसिंग आउट। राइट, आपको पता है ना कि फोमो क्या है? दैट इज द फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो फीलिंग जब आप घर पे बैठे हो जस्ट चिलिंग अपने कंफर्ट क्लोथ्स में, मे बी स्क्रोलिंग योर फोन एंड सडनली यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। मतलब सब लोग बाहर हैं, कोई कैफे में है, कोई रोड ट्रिप पे, या कोई पार्टी कर रहा है और आप सोच रहे हो लाइक एम आई मिसिंग समथिंग। इट्स क्रेजी ना, एक मिनट पहले तक यू आर लाइक रिलैक्स्ड, हैप्पी, नो थिंकिंग अबाउट व्हाट्स गोइंग आउट विद द वर्ल्ड, राइट? और नेक्स्ट मिनट में आपकी इंटायर लाइफ क्वेश्चन करने लग जाती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी ने फेरी लाइट्स के साथ एक एस्थेटिक फोटो पोस्ट कर दी। और सबसे फनी पार्ट पता है क्या है? हाफ द टाइम हमको जाना भी नहीं था, बट जैसे ही हमने दूसरों को देखा है सडनली इट फील्स इम्पोर्टेंट। दैट्स फोमो। ये लव नहीं होता, बट ये क्वाइटली आता है सीधा आपके फोन के स्क्रीन थ्रू। और फिर आता है इसका एक कामर वर्जन या एक कूलर कजन, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। इसके बारे में भी बात करेंगे, बट आफ्टर दिस ट्रैक, स्टे ट्यून्ड।

0: యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారు అందిస్తున్నారు అద్భుతమైన 444 రోజుల డిపాజిట్ పథకం.
1: ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేటుతో వృద్ధులకు 7.10% మరియు వయోవృద్ధులకు అదనంగా 0.25% వడ్డీ రేటు.
0: మరిన్ని వివరాలకు మీ దగ్గరలో ఉన్న యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్రాంచ్ ను సంప్రదించండి.
2: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज द फियर ऑफ मिसिंग आउट वर्सेस द जॉय ऑफ मिसिंग आउट के बारे में. तो जैसे अभी हमने फोमो के बारे में जाना, अब जानते हैं थोड़ा जॉय ऑफ मिसिंग आउट के बारे में. अब ये जो है एक टोटल डिफरेंट वाइब है. सेम पोस्ट देखते हैं और सेम स्टोरीज, बस इंस्टेड ऑफ स्ट्रेस जो है यू विल फील पीस. मतलब बस आप कहते हो यू नो वॉट, आई एम गुड राइट हियर. और जॉय ऑफ मिसिंग आउट क्या है, मतलब प्लान्स कैंसिल करना और फिर गिल्टी फील करना, लाउड पार्टी के ऊपर अपना बेड चूज करना और अपने कंफर्ट शो तीसरी बार देखना और स्टिल एंजॉय करना, नो बोलना और एक्चुअली में उसे करना, मतलब ये सारी चीज़ें. और ऑनेस्टली ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन है या डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीडम है, बिकॉज हर मोमेंट को शेयर करना जो है वो ज़रूरी नहीं होता और हर चीज़ स्टोरी बनानी ज़रूरी नहीं होती है, क्योंकि कुछ मोमेंट्स बस आपके होते हैं क्वाइट सिंपल एंड रियल. और लगता है कि हम सब थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहे हैं फोमो से जॉय ऑफ मिसिंग आउट की तरफ, है ना. तो कैसे हम उसे शिफ्ट ये देख रहे हैं फ्रॉम पीपल गोइंग आउट फ्रॉम फोमो टू जोमो, उसके बारे में हम बात करेंगे. बट आफ्टर दिस ट्रैक स्टे ट्यून्ड.

0: డాక్టర్లు
1: ఒక్క శ్రీ చైతన్య నుండి.
2: ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9.
3: वर्ल्ड स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 11:16 और हम बात कर रहे हैं फोमो वर्सेस जोमो के बारे में, द फियर ऑफ मिसिंग आउट वर्सेस द जॉय ऑफ मिसिंग आउट. तो जैसे मैंने कहा कि अब थोड़ा शिफ्ट जो है देखने को मिल रहा है फ्रॉम फोमो से जोमो की तरफ. मतलब पहले शायद हम हर जगह जाना चाहते थे, हर प्लान के लिए यस बोलते थे, और अब हम और ज़्यादा सिलेक्टिव हो गए हैं. वी बिकेम मोर सिलेक्टिव. हम अपनी टाइम, एनर्जी और पीस को वैल्यू करते हैं. और इसका मतलब ये नहीं है दैट वी आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, राइट? बस जस्ट वी आर चूजिंग डिफरेंटली, दैट्स इट. बट बैलेंस इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी फोमो भी अच्छा ही होता है. वो आपको पुश करता है, कम्फर्ट जोन से बाहर निकालता है, यू नो, न्यू लोगों से मिलवाता है, नई मेमोरीज क्रिएट करवाता है. सो इट्स नॉट बी मे बी फोमो या द जॉय ऑफ मिसिंग आउट. मे बी इट्स अबाउट यू नो नोइंग कब किसकी सुननी है. यू नो, गो आउट जब दिल करे, स्टे इन जब ज़रूरत हो, और यस बोलो जब एक्चुअली आप काफ़ी एक्साइटेड हो उस प्लान के लिए, और नो बोल दीजिए जब एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही हो एंड यू फील लाइक यू नीड टू स्टे इन, यू नीड टू यू नो गिव योर बॉडी दैट रेस्ट, और वो चाहिए. सो व्हेन यू आर नॉट फीलिंग लाइक गोइंग आउट, जस्ट सिंपली से यू नो नो, और अपने आप को यू नो मनाने की ज़रूरत नहीं है. यू नो दैट योर बॉडी नीड्स रेस्ट. तो जब आपको एक्साइटमेंट लगे, व्हेन यू आर ऑन योर एनर्जी, यू कैन गो आउट एंड एक्सप्लोर डूइंग ऑल द थिंग्स. और नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्क्रॉल कर रहे हो और वो छोटा सा फोमो आपको हिट करे, बस एक सेकेंड के लिए रुकना और खुद से पूछना, क्या मुझे एक्चुअली वहाँ होना है या सिर्फ लग रहा है कि वहाँ होना चाहिए. तो नेक्स्ट टाइम ये लाइन ज़रूर याद रखिएगा.

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 और नमस्ते हेलो आदाब पर हम बात कर रहे हैं द फियर ऑफ मिसिंग आउट वर्सेस द जॉय ऑफ मिसिंग आउट के बारे में। तो जैसे हमने कहा, जब भी हम नेक्स्ट टाइम यू नो स्क्रॉल कर रहे हो और वो छोटा सा फोमो आपको हिट करे, तो बस एक सेकेंड के लिए रुक के हमें ये सोचना है क्या मुझे वहाँ एक्चुअली होना है या सिर्फ लग रहा है कि होना चाहिए। बिग डिफरेंस, राइट? बिकॉज एंड ऑफ द डे लाइफ कहीं और नहीं हो रही है, लाइफ वहीं हो रही है जहां आप हो। तो चाहे आप बाहर प्लान्स बना रहे हो या हैप्पीली उन्हें कैंसिल कर रहे हो, इट्स योर मोमेंट, योर चॉइस एंड योर पीस। अगर आज थोड़ा फोमो फील कर रहे हो तो रश बिल्कुल मत कीजिए, और अगर आप अपनी जॉय ऑफ मिसिंग आउट एरा में हो तो एन्जॉय इट, नो एक्सप्लेनेशंस नीडेड, राइट? होल्ड ऑन टू वॉट एवर फील्स राइट फॉर यू, क्योंकि वही रियल बैलेंस है। तो दोस्तों, इस ब्यूटीफुल वाइब के साथ बने रहिए हमारे साथ, कमिंग अप कुछ और अमेजिंग म्यूजिक्स और कहानियाँ। स्टे ट्यून्ड।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, ओनली ऑन आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9। तो आज का दिन थोड़ा एक्स्ट्रा म्यूजिकल होने वाला है क्योंकि टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ सिंगर बेनी डेयाल। तो बेनी डेयाल की वॉइस जो है उनमें एक अलग ही फ्रेशनेस है। सो वेदर इट्स रोमांटिक ट्रैक हो जाए या एक डांस नंबर हो या एक फुल ऑन पार्टी एंथम, वो हर सॉन्ग अपनी यूनिक वॉइस में अपनी यूनिक वाइब ले आते हैं। तो एक ऐसा ही गाना है जो काफ़ी पॉपुलर था जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी। इसकी ये सॉन्ग हर जगह बजता था, इस गाने की कोरियोग्राफी बहुत लोग किया करते थे, एंड टिल टुडे दिस सॉन्ग इज़ वन ऑफ द पार्टी सॉन्ग्स जो हर पार्टी में प्ले होता ही है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि बेनी सिर्फ सिंगर नहीं, कमाल की परफॉर्मर भी है। स्टेज पे आते ही एटमॉस्फियर फुल पावर हो जाती है। तो ऐसा एक गाना जो लोगों को काफ़ी पसंद है फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, एंजॉय दिस ट्रैक, स्टे ट्यून्ड विथ मी हियर ऑन नमस्ते हेलो आदाब।

अपनी यूनिक वाइब ले आते हैं। उन्हें म्यूज़िक इंडस्ट्री में बड़ा ब्रेक मिला लेजेंडरी कंपोज़र एआर रहमान की वजह से। रहमान सर ने उनका टैलेंट नोटिस किया और ऑडिशन के बाद बेनी को इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद तो हिट्स उन्होंने काफ़ी दिए हैं, यू नो पप्पू कान डांस जैसे हमने सुना है, अभी बदतमीज़ दल जैसे सुपरहिट्स ट्रैक्स उन्होंने उन्हें यूथ आइकॉन बना दिया था। और सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग ही नहीं, बेनी बैंड फंक्टुएशन के भी एक मेंबर हैं, जहां उनका लाइव परफॉर्मेंस और स्टेज एनर्जी फैंस को क्रेजी कर देती है। तो प्लेबैक सिंगिंग के साथ साथ जब ये शोज़ करते हैं, परफॉर्मेंसेस करते हैं, तो लाइव म्यूज़िक सुनने के लिए भी नो लोग बहुत तादाद पे आते हैं, टू इन्जॉय, टू बी इन दैट मोमेंट, राइट? तो फिलहाल हम एक गाना सुनते हैं फ्रॉम द मूवी कपूर एंड सन्स। एन्जॉय दिस ट्रैक।

0: 300 మార్కులు సాధించిన
1: దేశం మొత్తంలో ఒకే ఒక్కడు
2: మన శ్రీ చైతన్య విద్యార్థే.
3: FM Rainbow 101.9.
4: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू एफएम रेनबो 101.9. तो हम बात कर रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब पर बेनी दयाल की, जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो बेनी दयाल जो है हिंदी के अलावा यू नो तेलुगु तमिल मलयालम फिल्म्स में भी उन्होंने काम किया है. तो बेनी दयाल तेलुगु सिनेमालो कूडा चालो हिट पाटल पाडारन्नमाट.

वेल, हम बात कर रहे हैं बेनी दयाल के बारे में, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बेनी दयाल ने एक्टिंग भी ट्राई की थी. उन्होंने मलयालम मूवी बाय द पीपल में डेब्यू किया था, जो एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी थी, और इस फिल्म के सारे गाने जो है S5 ग्रुप मेंबर्स ने गाए थे, और वहीं से एआर रहमान की नज़र बेनी पर पड़ी. अगर उनकी बचपन की अगर हम बात करें तो उनका चाइल्डहुड आबू धाबी UAE में गुजरा. वहीं स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से BCom और मास्टर्स इन जर्नलिज्म की डिग्री ली थी. एंड फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री में आने से पहले बेनी एक कंपनी में काम करते थे इवेंट्स कोऑर्डिनेटर के तौर पर, लेकिन उन्होंने अपनी BPO जॉब जो है वो क्विट कर दी सिर्फ अपने म्यूज़िक ड्रीम को फॉलो करने के लिए. और आज वो इंडिया के मोस्ट सेलिब्रेटेड सिंगर्स में माने जाते हैं. उनके गाने बहुत सारी भाषाओं में उन्होंने गाए हैं, कई हिट गाने उन्होंने दिए हैं, एंड उनके कई ऐसे गाने हैं जो यूथ को काफ़ी पसंद आते हैं. तो एक ऐसा ही गाना जो उनके लिए एक लॉन्चिंग पैड की तरह था. सो फ्रॉम द मूवी जाने तू या जाने ना से, पप्पू कान डांस. एंजॉय दिस ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो 101.9.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब। और स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 11:56 और नमस्ते हेलो आदाब कंटिन्यू होगा बट आफ्टर द न्यूज सेगमेंट जो आप सुनेंगे 12 बजे।

न्यूज़ इन हिंदी देन फॉलोड बाय न्यूज़ इन इंग्लिश. उसके बाद हम वापस हाजिर हो जाएंगे नमस्ते हेलो आदाब के साथ. इससे पहले कि हम न्यूज़ की ओर आपको ले चले, आइए सुनते हैं एक और गाना बाय अरिजीत सिंह. एंजॉय दिस ट्रैक.

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल का वित्री कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले को

का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाली यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह SOG द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत SOG ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। IPL क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रहे नमस्ते, हेलो, आदाब। ऑन आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजी रवली। तो इस अवर को शुरुआत करने से पहले, ये जानने से पहले कि क्या वो नए ट्रैवल ट्रेंड्स हैं जो इस साल ट्रेंड हो रहे हैं 2024 में, उससे पहले आइए सुनते हैं सोनू निगम का गाया हुआ ये गीत फ्रॉम द मूवी बोल भुलैया 3।

0: law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: FM Rainbow 101.9।
2: वेलकम बैक, नमस्ते, हेलो, आदाब, आप सुन रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ आरजी रफली। तो जैसे मैंने कहा इस अंतराल से पहले कि हम आप बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ट्रैवल ट्रेंड्स के बारे में दैट आर टेकिंग द इंडस्ट्री बाय स्टॉर्म इन दिस ईयर स्पेसिफिकली। तो अगर एक्साइटिंग ट्रेंड्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की, हर साल हम ट्रैवल ट्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ साल एक ट्रेंड ट्रैवल ट्रेंड होता है, कुछ साल नए ट्रेंड्स इमर्ज होते हैं, और कैसे लोग आज भी इतनी ही एक्साइटिंग है टू ट्राई समथिंग न्यू एंड एक्सपेरिमेंट समथिंग न्यू फॉर देमसेल्व्स। तो ऐसे ही एक ट्रैवल लिस्ट आई है, एक ट्रैवल ट्रेंड्स की लिस्ट आई है नई। तो कई बार जो है आजकल ट्रैवल सिर्फ फोटोज तक सीमित नहीं रही गई है, या हमारी बकेट लिस्ट जो हमने लिखा हुआ है वो चेक करना नहीं, बल्कि वो एक्सपीरियंसेस जो हमें काफ़ी पर्सनल है कुछ ना कुछ सिखाए और कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस हम हमारे साथ ले जाए। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस को ट्रैवलिंग में जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, और ऐसे ही आजकल बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एंथूजियास्ट हैं जो पर्टिकुलरली इसी रीज़न के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। हालांकि पहली एक चीज़ एक होती थी कि हम एक जगह जाते थे और वहाँ के टूरिस्ट पॉइंट्स हम पहले से ही आइटिनरी बना लेते थे एंड फिर वो हम जगह टिक मार्क करके वहाँ वहाँ जाके आते थे, बट अब ट्रैवलिंग ऐसा कुछ नहीं है। वी नीड टू, मतलब बिना कोई आइटिनरी के लोग आज जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं वहाँ की प्लेस को, वहाँ के खाने को, ताकि उन्हें बिना कोई प्री कंसीव्ड नोशंस के वो जाना पसंद करते हैं, खुद एक्सपीरियंस करना पसंद करते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला ट्रेंड आया है सस्टेनेबल इको टूर्स। तो सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में हमने बहुत बात की है हमारे शो में, कैसे इम्पैक्ट करता है हमारा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, हमारा भी एक क्या बोलते हैं, एक हेल्पिंग हैंड होना ज़रूरी है। तो उसमें सस्टेनेबल इको टूर्स जो है पहले आते हैं। तो आज के स्मार्ट ट्रैवलर्स ने क्या करना शुरू किया है कि ऐसे डेस्टिनेशंस चूज कर रहे हैं जो नेचर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे फॉरेस्ट लॉजेस, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्टेज और इको सर्टिफाइड रिसॉर्ट्स का क्रेज जो है काफ़ी बढ़ रहा है। भूटान और कोस्टा रिका जैसे ब्यूटिफुल डेस्टिनेशंस जो है आज ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं इन्हीं न्यू एस्पेक्ट्स पर, जहाँ ट्रैवल के साथ साथ एनवायरनमेंट भी या उसकी केयर भी उतनी ही अहमियत दी जा रही है जितनी कि हमारे ट्रैवल एक्सपीरियंस को। तो भाई अगर हमारा नेचर या ये जो जगहें हैं वो हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में ट्रैवल कैसे करेंगे? तो इसके लिए ऐसे सारे जो नेचर से जुड़े हुए या उसे प्रोटेक्ट करने में लगे हुए, तो ऐसे ऑप्शंस बहुत आजकल लोग चूज कर रहे हैं। तो शायद ये भी एक नया ट्रेंड है जो आप पिकअप कर रहा है, एंड यू माइट नॉट नो राइट कि आने वाले सालों में कितना ये ट्रैवल ट्रेंड बूम करेगा। वेल, कमिंग अप नेक्स्ट इज अ प्रोमो और उसके बाद गाने के साथ हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड।
3: ఇన్నారులా ఆకాశవాణికి 90 ఏళ్ళంట, అందుకే ఈ నెల 14వ తారీఖు ఆకాశవాణోలు పల్లె సుద్దుల ప్రోగ్రామ్ పెట్టిండ్రంట. ఏడా అంటారా, నాంపల్లి తెలుగు యూనివర్సిటీలా పొద్దుకంగా 6 గంటలకు.

0: सकता है? न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-

वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू नमस्ते हेलो आदाब ऑन FM रेनबो 101.9. तो हम बात कर रहे हैं कुछ ट्रैवल ट्रेंड्स के बारे में दैट इज़ टेकिंग इंडस्ट्री बाय स्टॉर्म इन दिस ईयर विच इज़ 2026. तो जैसे हमने अभी तक बात किया है अबाउट द ट्रेंड सस्टेनेबल इको टूर्स, तो नेक्स्ट ट्रेंड आ रही है वो है सोलो फीमेल ग्रुप ट्रैवल. लाइक मतलब आजकल विमेन ट्रैवलर्स जो है अभी कॉन्फिडेंटली जो है दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं बट विद द कंफर्ट ऑफ सेफ ग्रुप एक्सपीरियंसेस. मोरक्को के कलरफुल मार्केट्स हो या ग्रीस के यू नो स्टनिंग बीचेस.

वुमेन ओनली क्यूरेटेड ग्रुप्स काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं. तो स्पेसिफिकली आजकल जब ऐसे ग्रुप्स बन रहे हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली केटर किया जा रहा है टू वुमेन ट्रैवलर्स, तो सेफ्टी हो और डेस्टिनेशंस हो, तो उनको ध्यान पे रख के ये जो ट्रैवल है या ग्रुप ट्रैवल है इसे केटर किया जा रहा है, कस्टमाइज भी किया जा रहा है. यू नो, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, सेफ्टी प्लानिंग और इंस्टेंट फ्रेंडशिप. मतलब इतने सारे लोग आ रहे हैं, न्यू नए लोगों से मिलना होता है, एंड विथ टुगेदर देम यू लाइक एक्सपीरियंसिंग न्यू प्लेसेस. और कहीं ना कहीं आप यू नो पहली बार यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन. अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ यू माइट बी ट्रैवलिंग अ लॉट, राइट? बट दिस वन इज समथिंग न्यू फॉर वन सेल्फ, राइट? व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑन अ सोलो ग्रुप ट्रैवल, स्पेशली फॉर वुमेन, एंड यू नो फॉर्मिंग न्यू फ्रेंडशिप एंड नेविगेटिंग योर सेल्फ इन अ न्यू प्लेस एंड हाउ टू यू नो बी इन दैट न्यू स्पेस एंड हाउ टू कम ओवर विद लिटल बिट ऑफ हेस्टेंस दैट वी हैव, राइट? वेन नो बडी इज नोन टू अस. सो दैट्स इन अ न्यू वे वी कैन से इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर सम पीपल स्पेशली. एंड ऑल्सो यू नो स्पेशली वर्किंग वीमेन आर और सोलो एक्सप्लोरर्स ऑल्सो वेरी अबाउट कीन अबाउट टेकिंग दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. एंड ट्रैवलिंग इज वन थिंग दैट नाउ डीज पीपल आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, बिकॉज यू नो दोज एक्सपीरियंसिस विल अल्टीमेटली शेप अस एंड दैट एक्सपीरियंसिस वी विल कैरी फॉरवर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ आर टाइम, राइट? सो कमिंग अप नेक्स्ट सॉन्ग इज बाय टेलर स्विफ्ट. एंजॉय दिस वन.

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: నమ్మని ఒక్క శ్రీ చైతన్యలోనే.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, और मैं हूँ आपके साथ आरजी रफली, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं 5 ट्रैवल ट्रेंड्स टेकिंग द इंडस्ट्री बाय स्टॉर्म इन द ईयर 2026. तो अब तक हमने बात की अबाउट सस्टेनेबल इको टूर्स, सोलो फीमेल ग्रुप ट्रैवल. तो तीसरा ट्रेंड है AI पर्सनलाइज्ड आइटिनरीज. तो यस, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका पर्सनल ट्रैवल प्लानर बन चुका है. स्मार्ट ऐप्स आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पूरा ट्रिप जो है वो डिज़ाइन कर देते हैं. आपको स्पाइसी फूड पसंद हो, पीसफुल वॉक्स या एडवेंचर एक्टिविटीज, AI सब कुछ कस्टमाइज कर देता है. इवन वेदर चेंजेस के अकॉर्डिंग बैकअप प्लान्स भी रेडी रखता है. एंड ट्रैवल प्लानिंग अब और भी इजी और स्ट्रेस फ्री हो गया है थैंक्स टू AI पर्सनलाइज्ड आइटिनरीज. मतलब इससे पहले हमें खुद हम खुद बैठ के आइटनरी लिखा करते थे कि कहाँ जाना है, क्या करना है, एंड यू नो टेम्परेरी वेदर कहाँ है वहाँ का, क्या उसका प्लान बी या प्लान ए, ये सब हम पहले हम खुद किया करते थे. बट नाउ विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम अपने इस प्लानिंग को जो है AI अपने लिए, हमारे लिए पर्सनल या कस्टमाइज कर सकता है.

वेलकम बैक. हम बात कर रहे हैं कुछ ट्रैवल ट्रेंड्स के बारे में. दैट इज टेकिंग द इंडस्ट्री बाई स्टॉर्म इन 2026. तो वी हैव टॉक्ड अबाउट सो फार अबाउट सस्टेनेबल इको टूर्स, सोलो फीमेल ट्रैवल ग्रुप्स एंड AI पर्सनलाइज्ड आइटिनरीज. एंड फोर्थ ट्रेंड इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग विच इज वाइकेशंस, यानी कि वेकेशंस विद अ पर्पस. आजकल लोग सिर्फ घूमने के लिए ही ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, बल्कि रिलैक्स करने के लिए, फैमिली बॉन्डिंग, सेल्फ केयर या इंस्पिरेशन ट्रिप्स के लिए भी ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं ना. क्वाइट रोड ट्रिप्स हो या नेचर स्टेज और पीसफुल डेस्टिनेशंस का ट्रेंड जो है वो रैपिडली काफ़ी ग्रो हो रहा है. जब आप अपने ट्रैवल का वाई समझते हो, यानी कि वाई वी आर ट्रैवलिंग, व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट तो द होल एक्सपीरियंस इट बिकम्स मोर स्पेशल देन सिंपली ट्रैवलिंग. एंड ऑल्सो अब बात करते हैं फाइनली द मोस्ट मैजिकल ट्रेंड, दैट इज नॉक टूरिज्म. यू नो, डे टाइम क्राउड्स को अवॉइड करके अब लोग नाइट एडवेंचर्स इन्जॉय कर रहे हैं. इट्स लाइक नो स्टार गेजिंग, ग्लोइंग बीच वॉक्स एंड लेट नाइट नेचर टूर्स हैव गेन्ड पॉपुलैरिटी ओवर द टाइम. नो, चिली एंड न्यूजीलैंड डेस्टिनेशंस लाइक देम आर ऑफरिंग क्लियर नाइट स्काइज, एंड इसी वजह से भी ट्रैवलर्स के ये फेवरेट स्पॉट्स बन चुके हैं. सो नाइट ट्रैवल का पीसफुल और ड्रीमी एक्सपीरियंस लोगों को एक कंप्लीट क्या कह सकते हैं, एक डिफरेंट वाइब दे रहा है. सो ट्रैवलिंग, अगर आप भी प्लान्स बना रहे हैं इस साल हमारे देश में भी, अगर आप कुछ प्लेसेस देखना चाह रहे हो, तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पे आपको नो फीमेल ट्रिप्स, अगर आप ग्रुप ट्रैवल करना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको ऑफर्स मिल रहे हैं. या कोई भी सस्टेनेबल इको स्टेज आप प्रेफर करना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है इन आर कंट्री राइट नाउ. सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट एज वेल. सो काबट्टी मेरे को 2026 लो ఏమైనా ట్రావెల్ ప్లాన్స్ చేస్తే మాత్రం ఈ లేటెస్ట్ ట్రావెల్ ట్రెండ్స్ ని డెఫినెట్లీ ఒక్కసారి ట్రై చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ట్రావెల్ అంటే యూనో డెస్టినేషన్ కి వెళ్ళడం మాత్రమే కాకుండా ప్రతి మూమెంట్ ని ఎంజాయ్ చేయడం కూడా అయిపోయింది. లైక్ మెమరీస్ క్రియేట్ చేసుకోవడం మరియు

0: ఎల్ఐసి యొక్క బీమా కవచ్ మీ జీవిత అవసరాలకు అనుగుణంగా మారుతూ ఉండే ఒక ప్యూర్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్. కీలకమైన లైఫ్ స్టేజెస్ లో మీ సమ్ అష్యూర్డ్ ని పెంపొందించుకునే అవకాశం, ఫ్లెక్సిబుల్ ప్రీమియం పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ 100 సంవత్సరాల వరకు అందుబాటులో ఉండే లైఫ్ టైం రిస్క్ కవర్ తో ఎల్లప్పుడూ సురక్షితంగా ఉండండి. ఎల్ఐసి హర్ పల్ ఆప్కే సాత్.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब और स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 12:51:28. तो आज है एक फिल्म मेकर जिन्होंने बॉलीवुड को दिए हैं कुछ स्टाइलिश यूथ और एंटरटेनिंग फिल्म्स. हम बात कर रहे हैं पुनीत मल्होत्रा की, जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. 13 मई 1982 को बॉर्न हुए पुनीत मल्होत्रा ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और उन्होंने फिल्म मेकिंग का सफ़र स्टार्ट किया था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने बॉलीवुड के कुछ आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, जैसे करण जौहर की कभी खुशी कभी गम, निखिल अडवाणी की कल हो ना हो और तरुण मनसुखानी की दोस्ताना. तो ईयर्स ऑफ लर्निंग के बाद पुनीत ने 2010 में डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू किया है फ्रॉम द फिल्म आई हेट लव स्टोरीज के साथ. तो ये फिल्म यूथ ऑडियंस के बीच काफ़ी पॉपुलर हुई और ख़ास बात ये थी कि फिल्म को उन्होंने खुद लिखा भी था. और उसके बाद आई गोरी तेरे प्यार में, जिसे प्रोड्यूस किया था धर्मा प्रोडक्शंस ने. एंड फिल्म उस फिल्म में करीना कपूर और इमरान खान की जोड़ी एक बार फिर ऑडियंस को देखने को मिली. और फिर आई 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, जिसे डायरेक्ट किया है पुनीत मल्होत्रा ने, जिसमें नजर आए टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया एंड अनन्या पांडे. और इस फिल्म में आपको ग्लैमर, डांस और कॉलेज लाइफ का परफेक्ट मिक्स के साथ ये फिल्म यंगस्टर्स के लिए काफ़ी एक्साइटिंग रही. तो सिर्फ फिल्म से ही नहीं, इन्होंने जो है म्यूज़िक वीडियोस की दुनिया में भी अपना स्टाइल दिखाया है. 2020 में उन्होंने डायरेक्ट किया है टाइगर श्रॉफ के हिट म्यूज़िक वीडियो अनबिलीवेबल और कैसानोवा. तो ये जर्नी थी उनकी फ्रॉम बीइंग एन असिस्टेंट डायरेक्टर टू बीइंग अ डायरेक्टर एंड राइटर हिमसेल्फ, जिन्होंने कुछ ऐसे मूवीज लाने की कोशिश की है जो फ्रेश हो और स्टाइलिश टच उन फिल्म्स में हो. सो कमिंग अप राइट नाउ अ ट्रैक फ्रॉम द मूवी आई हेट लव स्टोरीज. एंजॉय दिस ट्रैक.

0: FM Rainbow 101.9
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9 और मैं हूं आपके साथ आरजी रफली। तो फिलहाल हम आ पहुंचे हैं हमारे सेगमेंट हेलो रेनबो पे। तो दोस्तों, जैसे कि नो हम हर एक दिन आपके लिए एक नया टॉपिक ले आते हैं और फिर बात होती है कि नो आपके ओपिनियंस क्या है, राय क्या है, ये हम तक पहुँचती है। बट आज का हमारा टॉपिक जो है ये काफ़ी सिंपल है और कहीं ना कहीं हर दिन हम इन्हें पाने की कोशिश करते हैं और कई बार बड़ी चीज़ों से ज़्यादा वो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो ज़्यादा मायने रखती है और कभी कभी वो हमारे दिन को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि वो स्मॉल थिंग्स क्या है, वो छोटी छोटी चीज़ें क्या है वो जो आपके दिन को बना देती है, स्मॉल थिंग्स दैट मेक योर डे इवन बेटर। कभी एक गर्म की कप की चाय हो सकती है, किसी का एक अनएक्सपेक्टेड टेक्स्ट हो सकता है, या बारिश की वो खुशबू, सौंधी सौंधी वो मिट्टी की खुशबू हो सकती है, या ट्रैफिक में फेवरेट गाना आपका बज जाना, या छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं बट मूड जो है वो पूरा चेंज कर देती है ना। तो आज के इस कॉलर आवर में हमें आप बताइए कि आपके दिन को बेटर बनाने वाली वो छोटी सी चीज़ क्या है। तो आप हमें डायल कर सकते हैं 1-0402-323-0030 और 0402-323-4821 और 0402-970-4715 पर। तो कमिंग अप नेक्स्ट सॉन्ग आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में आने वाला पल।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो। तो हमारे साथ जो है बात करने के लिए हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चीज़ है, वो छोटी सी चीज़ क्या है जो उनके दिन को और बेहतर कर देती है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: जी मैडम।
0: जी, नमस्कार सर। तो भरत जी बताइए, आप वो छोटी चीज़ क्या है जो दिन में आपको और बेटर बना देती है वो चीज़?
1: जी वो चीज़ तो यह है मैडम कि मैं हैदराबाद में सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करता हूँ
0: जी सर।
1: और समय मुझे पूरा रहता है दिन में, तो मेरे पास मोबाइल हो, मोबाइल के जरिए मैं एफएम हमेशा सुनता रहता हूँ।
0: जी
1: और एफएम में हर तरह का प्रोग्राम आता है, जैसे अभी हेलो रेनबो आया है, इससे पहले और आया था सखी
0: जी जी
1: सहेली आता है, हेलो फरमाइश आता है, तो हर तरह का प्रोग्राम आते रहता है हर दिन। तो खालीपन दूर करने के लिए ये सबसे बढ़िया हमारा जरिया
0: साथी है आपका।
1: है, सुनते
0: हाँ
1: रहना, समय पार हो जाता है, मनोरंजन
0: जी,
1: का बहुत बढ़िया
0: राइट
1: साधन है, तो
0: जी,
1: इससे खालीपन महसूस नहीं होता है।
0: बिल्कुल जी।
1: और जब मन किया, इच्छा किया, अपना मोबाइल खोले, एफएम चालू किए, अपना प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
0: जी, शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग।
1: थैंक यू मैडम। मैं गाने का रिक्वेस्ट है, क्योंकि
0: जी सर कहिए।
1: गाने सुनना मेरा बहुत, मतलब गाने का मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ, गाने
0: जी
1: सुनता रहता हूँ, खेल से
0: जी
1: जुड़ा हूँ, खेल और गाना है दोनों हमारे
0: राइट।
1: जिंदगी
0: तो गाना आप कुछ कह
1: में।
0: रहे थे, आपकी फरमाइश है कुछ रिक्वेस्ट?
1: तो वही है, एक गाना एक सावन के ऊपर है कि सावन आया बादल छाए,
0: हाँ
1: धूल चढ़ के
0: जी
1: खिल खिले।
0: राइट जी सर, बिल्कुल ट्राई करेंगे प्ले करने के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग।
2: మీ సొంత ఇంటి కల సాకారానికి యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారి అద్భుత అవకాశం.
3: అతి తక్కువ వడ్డీ రేటు 7.15% గృహ రుణాలను అందిస్తోంది.
2: అంతేకాక మీ యొక్క అత్యవసరాలకై బంగారంపై తక్షణ రుణ సదుపాయం, అతి తక్కువ వడ్డీ రేటుతో పాటు గ్రాముకి అత్యధిక రుణం అందిస్తుంది.
3: మీ సమీపంలోని యూనియన్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ ని నేడే సంప్రదించండి.
0: तो वेलकम बैक स्टूडियो क्लॉक में। वक्त हुआ है 1:10 और 10 सेकंड। तो हमारे साथ बात करने के लिए कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानते हैं कि उनके दिन को और बेटर करने वाली वो छोटी सी चीज़ क्या।

0: ಹಲೋ,
1: गुड आफ्टरनून मैडम,
0: गुड आफ्टरनून सर।
1: मैं नरसिम्हा रेड्डी मैडम प्रेमावती पेट से बोल रहा हूँ।
0: जी सर, तो बताइए सर।
1: सुबह मैडम जो वॉकिंग को जाते हैं, नाम दवा मैडम,
0: ओके सर जी।
1: उस तरफ क्या है बोले तो ऐसा हरे हरे झाड़ रहता, और जो आकाश को देखते हम धरती को देखते,
0: जी
1: और जो सूर्य नमस्कार जो करते,
0: ओके।
1: उससे हमारा दिन पूरा मतलब ऐसा बिल्कुल एकदम ये हो जाता मैडम।
0: जी।
1: वो जो पक्षियों का देखते रहते, तो
0: तो ये
1: उसके
0: सब आपका
1: मतलब एक
0: दिन
1: दिन
0: थोड़ा और
1: क्या
0: बेहतर
1: लगता,
0: बना देता है,
1: हाँ उधर
0: इनशॉर्ट।
1: समझो एक दिन भी नहीं गया मेरे को, तो ऐसा लगता कुछ कमी है, आज पूरा दिन तमाम कुछ कमी दिखते रहता।
0: जी।
1: हाँ तो सुबह कहीं भी मारे दूसरे गांव में भी रहता, पहले ये ढूंढ लेता हूँ ये जगह किधर मिलता गांव में के तरफ। तो
0: हाँ, तो मतलब आपको हरियाली और पेड़ पौधे पक्षियाँ देखना पसंद है सुबह के वॉक
1: नेचर
0: पर।
1: नेचर लवर हूँ मैडम मैं तो,
0: राइट सर, थैंक यू सर, थैंक
1: ये
0: यू।
1: गाना सुना सकते हैं मैडम,
0: जी सर, कोशिश तो करेंगे, बिल्कुल बोलिए।
1: इस मैडम गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा बोल के गाना है मैडम,
0: जी, राइट
1: ये
0: सर,
1: गाना सुने आते बड़ी मेहरबानी है आपकी। थैंक
0: ओके सर, थैंक यू, थैंक यू फॉर कॉलिंग।
1: यू मैडम।
0: तो दोस्तों, जैसे हमने कहा है कि वो स्मॉल थिंग्स दैट मेक्स योर डे मच बेटर, तो जैसे इन्होंने कहा, कईयों के लिए एक मॉर्निंग वॉक हो सकता है, किसी का अपने पेट का वेलकम हो सकता है, या बस अपनी मम्मी का हाथ का खाना। मतलब ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दिन में हम अक्सर शायद करते हैं, कई बार हम ओवरलुक हो जाता है, बट दैट मॉक मेक्स द डे इवन मोर बेटर, राइट। कई बार आपकी फेवरेट एक डिश भी अगर आपके सामने आ जाती है, तो दिन भर जो भी हुआ है उसे हम थोड़ा मतलब पीछे छोड़कर उसे एंजॉय करते हैं, तो उससे हमारा मूड बन जाता है ना। सो दैट लिटिल एफर्ट गोज अ लॉन्ग वे। तो आप भी आपकी कॉल कर सकते हैं ये बताने के लिए कि आपके दिन को बेटर बनाने वाली वो छोटी सी चीज़ क्या है। आप कॉल कर सकते हैं ऑन नंबर्स 0402323 0030 और 0402323 4821 पर।

0: ऑलराइट, ये गाना था फ्रॉम नोवी खाकी जिसे गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। तो फिलहाल हम टॉपिक पर आते हैं कि ये आज हमारा सवाल था अपने लिसनर्स से कि उनके दिन में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं जो उनके दिन को और बेटर करते हैं। तो हमारे साथ हमारे अगले कॉलर एकदम तैयार है, तो उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार जी.
0: नमस्कार सर।
1: రవళి గారు,
0: यस सर।
1: నేను పీవీఆర్ ని మాట్లాడుతున్నాను.
0: చెప్పండి సార్.
1: నాకు నచ్చింది ఏమిటంటే, పానికి పత్త, పాన్ పాన్ తింటాం కదా,
0: అవునండి.
1: ఆ పానికి పత్త దాన్ని నేను నవలేస్తా ఉంటాను.
0: ఓకే,
1: అంటే ఆకులు ఉంటాయి చూడండి,
0: అవునవును.
1: ఆ ఆకులు నేను చాలా బాగా యూజ్ చేస్తుంటాను అన్నమాట.
0: ఓకే, సో అది మీ డేని బెటర్ చేస్తుందా? అది ఎందుకంటే
1: నాకు బుగ్గలు పొంగుతుంటాయి, ఆ తర్వాత శరీరానికి కూడా మంచిది. అది ఆకు ఆకు తినడం వలన, ఆకంటే తమలపాకు,
0: అవును. ఓకే,
1: పత్తే బోల్తీ హే పానికి,
0: పాన్ కా పత్తా,
1: పాన్
0: రైట్.
1: ఉస్మే దాల్తీ నా
0: హా బిల్కుల్
1: వో హై కాలి చున్నే లగాకే ఉప్పర్ సే
0: రైట్
1: మై
0: సర్.
1: ఐసా లగాతా హూ చున్నే
0: बट सर, मैंने आपसे
1: ऊपर
0: पूछा है ना कि
1: से
0: मतलब छोटी
1: वो
0: चीज़ें
1: मैं
0: जो
1: पान
0: आपके
1: की
0: दिन को
1: बोलिंग का
0: बेहतर
1: बात करें.
0: बनाते
1: नमस्कार
0: हैं.
1: जी.
0: राइट सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग. और राइट, तो आज हमने सवाल आपसे यही पूछा है कि वो छोटी चीज़ क्या है जो आपके दिन को थोड़ा बेटर बना देती है. हेलो,
1: वेरी वेरी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून रवली जी, श्रीनिवास राम मलकपेट माँ.
0: गुड आफ्टरनून श्रीनिवास जी. तो सर बताइए, वो छोटी चीज़ क्या है दैट मेक्स योर डे बेटर?
1: क्या मैडम, छोटी सी
0: छोटी बातें या छोटी चीज़ें, जिस लाइक मैंने जैसे मैंने बोला, किसी के लिए एक कप ऑफ टी हो सकता है, किसी के लिए मॉर्निंग वॉक हो सकती है. तो ऐसे ही कोई चीज़ जो आप डेली करते हो दैट मेक्स योर डे बेटर?
1: हम तो रोजाना हमारे पार्क में जाते हैं मैडम, तो हम सब लोगों को बुलाते हैं लाफिंग के लिए, तो और क्लैपिंग के वास्ते आवा बोल के बोलते हैं. वो
0: जी
1: क्या है बोले तो 5 मिनट, 7 7 8 मिनट का लाफिंग एंड क्लैपिंग है. तो
0: ओके,
1: लोग बोलते हैं, नहीं एक राउंड मार के आते, एक राउंड मार के आते. मैं बोला, अरे नहीं साहब, एक राउंड में ही आपको जो है सर हमारा खत्म हो जाता. बहुत ही छोटी छोटी ये करते हैं लाफिंग, एक 20 बार 25 बार लाफिंग करते हैं, एक 30 बार जो सो
0: तो ये
1: 40 बार
0: आपके दिन को
1: जो
0: बेटर बनाता है,
1: यस
0: ये एक्टिविटी जो आप करते हो.
1: यस. इससे क्या होता है, सब लोग अभी भी आज भी हमारे पास एक मैरिज डे फंक्शन करे थे, उसके
0: राइट
1: लिए नॉट लेस देन 50 से 55 लोग आए थे. तो
0: जी,
1: ऐसा हमारे पास रोज थोड़ा बहुत कुछ तो भी चलते रहता है. छोटे छोटे चीज आप बोले हुए साहब, छोटे छोटे हम हंसा के जो है सो उन लोगों को एंटरटेन करते हैं. एंटरटेन करने से पूरे लोग भी बहुत ही अच्छा, दे आर गिविंग रेस्पॉन्स टू अस
0: राइट
1: मैम.
0: सर. थैंक यू सर,
1: तो
0: थैंक यू फॉर
1: दिस
0: कॉलिंग,
1: इज कैंपेन.
0: थैंक
1: थैंक यू
0: यू.
1: मैम, थैंक यू.
0: राइट, जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो हमें थोड़ा बहुत वो रिलीफ मिलता है कईयों के लिए. वो एक गाना सुन के उनका मूड ठीक हो सकता है, या वो डे पूरा बेटर हो सकता है, या किसी से वो बिना प्लान के मिलना अपने दोस्तों के साथ, वो प्लान भी वो भी एक्साइटमेंट ऐड कर देता है. और फिर हम जब इतने टाइम के बाद वो मिलते हैं, इन इम्प्रॉम्प्टू मीट्स होती है, तो वो भी हमारे दिन को एक नया बंदे एक नया आरजू या नया उम्मीद देती है, टू बी फील हैप्पी, टू मेक आर डे इवन मोर बेटर, राइट? और ऑनेस्टली, लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि हम बड़ी अचीवमेंट्स को पीछे या बड़े अचीवमेंट्स के पीछे भागते रहते हैं, और उन छोटी छोटी खुशियों को नोटिस भी नहीं करते हैं बहुत बार. बट अगर ध्यान से देखें तो वही लिटिल मोमेंट्स है जो हमारे मूड को सेव करते हैं. क्योंकि कभी वो सुबह की परफेक्ट वेदर मिल जाना, या कभी किसी स्ट्रेंजर का स्माइल, या कभी बिना रीजन के किसी फ्रेंड का कॉल आ जाना या उनसे मिलना. और फनी थिंग ये है कि ये चीज़ें फ्री होती है, बट इम्पैक्ट जो है काफ़ी प्राइसलेस होती है. राइट, आपसे बात होगी और फिर से विषय पे आफ्टर दिस कमर्शियल. सो स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो 101.9.
2: తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత రాష్ట్రం మొదటిసారిగా జనాభా లెక్కింపునకు సిద్ధమవుతోంది.

0: आप सुन रहे हैं ना आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 एंड 3 o'clock में वक्त हुआ है 1:25 और 7 सेकेंड। तो बात कर रहे हैं हम छोटी चीज़ें जो हमारे दिन को बेहतर बना देते हैं। तो फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो, मैं गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून सर।

0: Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं फ्रॉम रेनबो 101.9। तो हम बात कर रहे हैं कि दिन भर वो छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं जो हमारे दिन को और बेटर कर देती है। जैसे आपने कॉलेज ने हमें कहा है, किसी के लिए मेडिटेशन हो सकती है, किसी के लिए अपना मॉर्निंग वॉक हो सकता है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें, या किसी अपने दोस्तों के साथ मिल जाना, या उनका टेक्स्ट आना, तो ये सिंपल सी चीज़ें हमारे दिन को और बेटर करते हैं। तो ऐसे ही उनके दिन को कैसे बेटर करते हैं, तो उनसे जानते हैं हमारे अगले कॉलर। हेलो,
2: हेलो, गुड आफ्टरनून आदाब रवि जी।
1: गुड आफ्टरनून सर
2: जी, शेर खान बोल रहा हूँ तलब कट्टा अमन नगर से।
1: जी सर।
2: और मेरा सभी भाई बहनों दोस्तों को भी प्यार भरा सलाम है। अल्लाह से दुआ करता हूँ आपको सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे।
1: जी थैंक यू सर।
2: जी रवनी जी, मेरा तो यही है, सुबह सुबह उठ के अपनी सोच को बेहतर रखना, बस खुशनुमा उठना सुबह, सोच को अच्छा, और उठने के साथ ही अल्लाह का शुक्र अदा करना कि मुझे अल्लाह ने सुलाया था और मुझे जगा भी दिया, यही सबसे बड़ी नेमत है मेरे लिए। और सुबह उठना और इबादत करना और दुआ सलाम, किसी से भी मिलना जुलना, सलाम करना, दुआ करना और मुस्कुराते रहने की कोशिश करना छोटे बच्चों के साथ।

0: हो गया साथ, दिल से मतलब दिल से किसी से भी दिल से अच्छी तरह से दिल से बात करने की कोशिश करना
1: जी।
0: और छोटी सी कोई भी छोटी छोटी चीज हो तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बनती है। कतरा कतरा मिलके ही समंदर बनता है। हम बड़ी बड़ी चीजों के पीछे ढूंढेंगे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सुबह की सोच ही खराब कर देंगे तो सारा शेड्यूल खराब हो जाएगा। इसलिए सुबह सुबह सोच ही बेहतर रखना चाहिए तो सारा शेड्यूल अच्छा रहेगा हमारा।
1: राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग।
0: ओके मैडम, शुक्रिया।
1: तो हर एक के लिए डिफरेंट हो सकती है, वो छोटी चीज़ें क्या है वो उनके लिए मैटर करती है, बट दैट स्मॉल थिंग्स मेक्स अ बिग डिफरेंस इन वन पर्सन्स लाइफ। तो आपके दिल में या आपके दिन को बेहतर वो छोटी चीज़ें क्या बनाती है, आप हमें कॉल करके बता सकते हो। तो फिलहाल आपके लिए गाना आ रहा है, बट इस कमर्शियल ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड।

0: राइट वो गाना था फ्रॉम द फिल्म ब्रह्मचारी. तो हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं. तो व्हाट आर द स्मॉल थिंग्स दैट मेक्स दे डे बेटर. हेलो, गुड
1: गुड आफ्टरनून मैडम, के
0: आफ्टरनून सर.
1: रमेश बात कर रहा हूँ। आपका नाम मैडम?
0: रवली सर.
1: रावली जी नमस्कार मैडम, के रमेश बात कर रहा हूँ। टॉपिक बहुत अच्छा है मैडम। मेरे को 30-35 साल के नीचे, 40 साल के नीचे मेरे पास पैसे थे मैडम, 1 MB, 2 MB, 3 MB, 5 MB, 10, 20, 25। वो
0: जी
1: देख लेते मेरे को बहुत खुशी होती मैडम। अभी तो बच्चों को भी नहीं मानवा होते है बोलते हैं, 1 पैसा, 2 पैसा, 3, 5, 10, 20, 25, 50।
0: जी ओके
1: अब 1 रुपए के नोट, 2 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट, बड़े बड़े नोट रहते थे मैडम, जब
0: जी, बड़े होते थे तब के टाइम
1: बड़े
0: पे.
1: नोट रहते। और क्या एक टेप रिकॉर्ड है मैडम मेरे का, 1990 का टेप रिकॉर्ड, अभी भी काम चल रहा है मैडम। तो कहीं
0: ओके
1: कैसे डाले के पुराने सांगा रख लेके मैं सुनते रहते मैडम,
0: जी
1: बहुत
0: सर.
1: खुशी हो जाती मेरे को।
0: राइट सर, थैंक यू, थैंक
1: दादा
0: यू.
1: को 35 ईयर्स हो गया, अभी टेप वही चल रहा है, ऐसी चल रहा है मेरे को अभी भी कुछ
0: बिल्कुल
1: अच्छा हो, मैं हिफाज से रख दिया हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है मैडम मेरे को।
0: राइट राइट, चलिए
1: धन्यवाद
0: सर.
1: मैडम, के रमेश इस मामले।
0: टॉपिक हमारा आज का ये था कि कोई ऐसी छोटी चीज़ जो है जो आपके दिन को और बेहतर बना देती है. जैसे कि यू नो, किसी के लिए वो एक गर्म चाय का कप हो सकता है, या किसी का कोई अनएक्सपेक्टेड सा टेक्स्ट, या किसी की यू नो अनएक्सपेक्टेड सा विजिट, और किसी का वो फेवरेट खाना एकदम बन के टेबल पे तैयार हो और उसे सेवर करना. मतलब पूरी दिन की थकावट क्यों ना हो, या मूड कितना भी क्यों ना ऑफ हो, वो ये छोटी छोटी चीज चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमारा जो मूड है वो कहीं ना कहीं अपलिफ्ट हो ही जाता है ना. और जैसे मैंने कहा ऑनेस्टली कि लाइफ हमारी इतनी फास्ट पेस्ड हो गई है कि हम कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, या किसी ना किसी चीज़ को हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. बट इसे इसके पीछे पीछे भागते हुए कभी कभार हम उन छोटी छोटी खुशियों को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं. बट अगर ध्यान से हम देखें तो वही लिटिल मोमेंट्स है जो हमारे मूड को सेव कर देते हैं. कहते हैं ना कि ये चीज़ें जो है वो खरीदा नहीं जाता, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये चीज़ें फ्री होती है. राइट, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता बेसिकली. लाइक यू नो, पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, या इस चीज़ को फील करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता आपको बेसिकली, जनरली अगर हम बात करें. बट इम्पैक्ट जो ऐसी चीज़ों की होती है हमारे लाइफ में वो काफ़ी प्राइसलेस होती है. अगर उसके लिए हम कितना भी ट्राई करें या कुछ भी इतना भी अमाउंट पे कर ले, वो चीज़ें हम महसूस नहीं कर सकते. तो कमिंग अप अनदर स्पॉट, और उसके बाद हम हेलो रेनबो जारी रखेंगे. स्टे ट्यून टू एफएम रेनबो 101.9.
2: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान.
3: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण.
2: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो,
3: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
2: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध. डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप, अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in, या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें. न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.
4: FM Rainbow 101.9.
0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं फिल्म रेनबो 101.9, और मैं हूँ आपके साथ आरजी रवली. तो हम बात कर रहे हैं स्मॉल थिंग्स के बारे में जो हमारे दिन को बेहतर बनाते हैं. तो फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं. हेलो
1: हेलो.
0: हेलो नमस्कार सर, आपका नाम, कहाँ से बात कर रहे
1: हाँ
0: हैं?
1: नमस्ते मैडम, मैं गौरीपति शास्त्री, यहाँ बसंत नगर कुकटपल्ली में ठहरता हूँ.
0: जी सर,
1: ये छोटी चीज एक्चुअली आपको हैप्पी रखने के लिए छोटी चीज की ही जरूरत है, किसी को भी हो. एक्चुअली लाइफ इज मेड ऑफ दो स्मॉल मोमेंट्स व्हेन योर हार्ट जस्ट गेट्स फिल्ड,
0: राइट,
1: द स्मॉल बेबी स्माइल. एक्चुअली लकीली भगवान का शुक्र है, आप लोगों का दुआ ही थी, रिजल्ट है. आई एम ब्लेस्ड विद अ ग्रैंड डॉटर देन अ ग्रैंड सन.
0: ओह कांग्रेचुलेशन सर, नाइस.
1: थैंक यू मैडम. तो ये छोटे हमारे ग्रैंड सन का जो मुस्कुराता हुआ जो स्माइल का एक फोटो देखते हैं तो लगता है कि दो दिन बहुत खुश हो गए हम द होल डे.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: एनसीपीसीआर आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: दी।
1: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
2: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
3: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध।
1: डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन।

0: आप टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर, और हमें आप सुन रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर।
1: FM रेनबो 101.9।
0: स्टूडियोज की घड़ी में इस वक्त 9:30 और

सेकेंड्स हो चुके हैं। सामाइन, प्रोग्राम नए रंग का आगाज हो उससे पहले आइए सुनते हैं आज की अच्छी बात। दोस्तों, सब्र एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है। जब इंसान मुश्किल वक्त में सब्र करता है तो दिल को सुकून मिलता है और उम्मीद की किरण हमेशा बाकी रहती है। सब्र न सिर्फ आजमाइश को आसान करता है बल्कि इंसान के किरदार को भी मजबूत बनाता है। मुश्किल लम्हे हमेशा के लिए नहीं होते, लेकिन सब्र करने वाले हमेशा याद रखे जाते हैं। दोस्तों, सब्र को अपना लीजिए क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। इसी पैगाम के साथ सामाइन, आइए शुरुआत करते हैं नए रंग प्रोग्राम की।

0: हमेशा कायम रहता है। इसी तरह हमारे किरदार में ज़हनी सुकून और शुक्रगुजारी भी होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें क़नाअत, शुक्रगुजारी और बहुत सारी चीज़ें हासिल होती हैं। जो आपके पास है उस पर राज़ी रहना ही असल अमीरी है। ज़्यादा की हवस इंसान को कभी मुतमईन होने नहीं देती। इसी तरह जब आप अपनी नेमतों को गिनना शुरू कर देंगे तो आपको शिकायतें करने का वक्त नहीं मिलेगा। हमेशा मुस्बित सोचें। जिस तरह अंधेरे में चिराग रास्ता दिखाता है, इसी तरह मुश्किल हालात में मुस्बित सोच इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है। ये हरफ ताबंदा सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी में उतारने के लिए है। जी हाँ सामाइन, अगर हम इनमें से चंद बातों पर भी अमल कर ले तो हमारी ज़िंदगी ना सिर्फ खुद हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी पुरसुकून और रोशन बन सकती है।
1: किरदार और अखलाक इंसान की असल पहचान हैं। दौलत, इल्म और ताकत वक्ती हैं, मगर किरदार और अखलाक हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं। यही चंद अच्छी बातें हरफ ताबिंदा के तहत अभी आपने समाप्त की। तहरीर व पेशकश थी मोहतरमा फहमिदा फहमोश की। सामाइन, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग। नायरंग में अब आइए सुनते हैं मत सहल हमें जानो सिलसिले के तहत अदबी तकरीर, जिसका उनवान है लुत्फुन्निसा इम्तियाज, और पेशकश है डॉक्टर सैयदा असफिया कौसर की।
2: आमतौर पर माँ लखाबाई जो साहिब दीवान हैं, उनका दीवान 1213 हिजरी मुताबिक 1797 ईस्वी हैं। आमतौर पर माँ लखाबाई को उर्दू की पहली साहिब दीवान शायरा माना जाता है, मगर यह सही नहीं है कि लुत्फुन्निसा इम्तियाज़ जो उर्दू की साहिब दीवान हैं, उनका दीवान 1212 हिजरी मुताबिक 1796 ईस्वी में मुरत्तिब हुआ। उस लिहाज से इम्तियाज़ उर्दू की पहली साहिब दीवान शायरा हैं, यानी माँ लखाबाई इम्तियाज़ से एक साल बाद की साहिब दीवान शायरा हैं। इम्तियाज़ के दीवान का एक कलमी नुस्खा कुतुब खाने सालारजंग म्यूज़ियम हैदराबाद में मौजूद है। उस ज़माने में तमन्ना, तजल्ली, शौख, एहसान, शाद, बयान वगैरह के शेर व सुखन का चर्चा था। इम्तियाज़ के दीवान तकरीबन असनाफ शेर यानी गज़लियात, खसायद, मुखम्मस, मुसम्मन, मुसद्दस, रुबाई, खिता, मसनवी और मनाक़बत वगैरह मिलते हैं। इस दीवान के अलावा एक तवील मसनवी मिलती है जो तकरीबन 6000 से ज़ायद अशार पर मुश्तमिल है, जिसका नाम गुलशन शोरा है। इम्तियाज़ के दीवान जो 156 सफ़ात पर मुश्तमिल है, इसमें 184 गज़लें 95 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं। ये गज़लें रदीफ़ वार तरतीब की माला में पुराई गई हैं, मगर कहीं कहीं तरतीब में फ़र्क भी आ गया है। गज़लों के बाद 23 मुतफर्रिक अशार हैं, फिर 15 रुबाइयात, 5 खिताब, चंद मुखम्मस, मुसम्मन, नात व हमद बारी ताला है। इसके मासिवा एक अर्जी बजानिब इमामत पना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और एक फ़ारसी नात है। निज़ाम अली ख़ाँ की मदहा और 10 खितात और 6 खसायद भी हैं। फिर 221 एशार पर मुश्तमिल मसनवी और एक फ़ारसी नज़म पर दीवान का ख़ात्मा हुआ जो दर्ज ज़ेल हैं। चूँ अज़ कनीज़ हज़रत ख़ातून दरी जमा अशार ताज़ा जमा शुदा दिल शगुफ्ता शुद अज़ रुए यमन साल हिमायूं एक किताब दीवान इम्तियाज़ बखौनी गुफ्तश। जनाब नसीरुद्दीन हाशमी साहब जो कुतुब खाने सालार जंग की वजाहती फहरिस्त तरतीब दिए हैं, अपनी फहरिस्त में दीवान इम्तियाज़ के मुतालिक लिखा है और गुलशन शोरा के हवाले से लिखते हैं, जो लुत्फुन्निसा सच्चा है तेरा नाम तेरे शेर का शोरा तारूम शाम अजब खिस्सा नादिर बनाई है आज जहाँ में बहुत इसका होगा रिवाज। तेरा जो तखल्लुस है अब इम्तियाज़ है सब अहले हुनरों में तू शहबाज। लुत्फुन्निसा इम्तियाज़ की तारीख़ पैदाइश या सन वफात नहीं मिलता। लुत्फुन्निसा इम्तियाज़ के शोहर जनाब असद अली ख़ान तमन्ना का इंतकाल शादी के 36

36 साल बाद 1799 ईस्वी में हुआ। इस तरह इम्तियाज़ की शादी का सन 1168 हिजरी मुताबिक 1754 ईस्वी में होगा। उस जमाने में आम तौर पर लड़कियों की शादी 13 या 14 साल की उम्र में हुआ करती थी। उस लिहाज से इम्तियाज़ की सन पैदाइश 1155 हिजरी या 1154 हिजरी हो सकता है। मेरा इश्क है साल 36 का, 100 बरस बाद पल भर में ये क्या किया कि इस चरख को चरख देव या अली करो दूर गर्दिश बराए नबी। इस मसनवी में दीवान के अशार की तेदाद और सन तसनीफ का भी इजहार होता है और इम्तियाज़ के नाम का लुत्फ शामिल होने की तरफ भी इशारा मिलता है। दीवान में जो मसनवी है जिसमें शायरा की ज़िंदगी के हालात खलमबंद किए गए हैं। लुत्फुनीसा जब सवा साल की थी उनकी वालिदा का इंतकाल हो

और इम्तियाज़ के नाम का लुत्फ़ शामिल होने की तरफ भी इशारा मिलता है। दीवान में जो मसनवी है जिसमें शायरा की ज़िंदगी के हालात खलमबंद किए गए हैं। लुत्फुनीसा जब 1.25 साल की थी, उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया और शफ़क़त पिदरी से कुछ दिनों के लिए महरूम होना पड़ा। गैरों के घर में परवरिश पाई, जेवर तालीम व तरबियत से आरास्ता हुई। जब किस्मत जागे तो बाप मिल गए। मसनवी गुलशन शोरा से वाज़े होता है कि इम्तियाज़ शाह अताउल्ला की मुरीद थी, जो शाह अमीनुद्दीन अली आला के पोते थे। जनाब नसीरुद्दीन हाशमी ने गुलजार आसफिया के हवाले से शाह साहब के मुतालिक फरमाते हैं, शाह अताउल्ला शाह अमीनुद्दीन अली आला बेजापुरी के औलाद और खुलफा में से हैं। इम्तियाज़ के खसायद भी लिखे हैं जो खूब लिखे हैं। मिसाल के तौर पर चंद अशार मुलायजा हों, शुक्र सत शुक्र खुदाए कार साज बंदगा, किस मज़े से फिर किया दिल हाय आलिम आलम शाद माँ। लुत्फ़ुन्निसा इम्तियाज़ की एक मुसद्दस के चंद बंद मुलायजा हों, मैं दिल से मुस्तफ़ा का जान फिदा हूँ, मुहिब्बे शेर यजदा बा सफ़ा हूँ, जहाँ में बंदा खैर उनिसा हूँ, यही हरदम कहूँगा और कहाँ हूँ, मुहिब्बे अहले बैत मुस्तफ़ा हूँ, गुलाम ख़ानदान मुर्तज़ा हूँ। इमामुल मशारिक़ वल मगारिब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की एक मनक़बत है जिसका मतला है, ऐ वसा मुस्तफ़ा हो साहिब लौलाक के, हुक्म पर हैं जिन व इंस और साकिना अफलाक के। इम्तियाज़ के हम्द के तीन शेर मुलाजा हों, खाक को अशरफ किया किन्ने उन्ने, ज़ात को जलवागर उस में किया किन्ने उन्ने, उसकी तौहीद किसी ने ना अदा हो लकिन, शेर व अशार व शायर किया किन्ने उन्ने। इम्तियाज़ हुए हमें ये चश्मे बीना, देखें हर शय में जहूर किया किन्ने उन्ने। इम्तियाज़ का खिता दर्ज ज़ेल है, जुल्फ़ बलदार को दिल अपना ना देना सो दिया, सर पे ये काली बला हाय ना लेना सो लिया। दोस्तों देखो क्या आन बनी है, जी पर इश्क का जहर भरा जाम ना पीना सो पिया। जिस तरह खुली के कुलियात और मकामी रंग मिलता है, इसी तरह इम्तियाज़ के दीवान में भी इसकी झलकियां नज़र आती हैं। इम्तियाज़ ने होली पर एक नज़म लिखी है, दिखला किस मज़े से अब के बहार होली, खेले हैं सब जमा हो क्या गुले गद्दार होली, सारी परी रखा मिल कैसी मचाई धूमे, रंगे जर्द व सुर्ख के कर खेले निगार होली। इम्तियाज़ ने बड़ी तवील बहरों में भी गज़लें कही हैं, ये वही हैं दिल चाक जो आके बैठी हैं, तुम पास करते हैं बातें मीठी से मीठी, हमारी सुखन तुमको लगती है नसीहत की बातें, अब ना समझो जाना चकोरों की मानिंद। इम्तियाज़ कोई सूफी शायरा नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके कलाम में कई सूफियाना अशार मिलते हैं। दिले आदम ही जो आईना सरकार बना, पर तू ए ज़ात तजल्ली से जिलादार बना। मालाखा बाई की तरह इम्तियाज़ भी तकरीबन तमाम वक्तों में हज़रत अली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और गौसे आज़म से अकीदत का इजहार किया है। इम्तियाज़ आप तेरा लखब हमने जहाँ फिदाए अबू तुराब किया, बुला लो अब नजफ में इम्तियाज़ है या अली मुस्तर, दिखाओ अब करम से इसके बातें हरदम मज़ार। इम्तियाज़ अब तो तसद्दुक से बनी आले बनी, नबी आले नबी, शुक्र हक दिल से मुहिब हैदर करार बना। इम्तियाज़ के दो अशार मुनाजात मुलाहिज़ा फरमाइए, लिखूं क्या वस्फ में इस किबरिया का, है साहिब अर्श और तहत सरा का, हमें ख्वाहिश है इसलिए कि ऐ साखी, रहे ता हशर मस्ती जिसकी बाकी। इम्तियाज़ के खसीदे आसिफ जा सानी वालिय दक्कन की मदह का एक अशार मुलायजा हूँ, ए ज़बाँ उस शाह आसिफ जा सानी की है तू, हो मुअद्दब कर।

राम नायरंग और नायरंग में गीत सुरीले गाते जा इस सिलसिले के तहत कुछ मेरी पसंद के फिल्मी नगमे पेश किए जा रहे हैं। सामाइन, प्यार मोहब्बत एक ऐसी ताकत है जो खौफ को मिटा देती है। जब दिल में सच्चा प्यार होता है तो इंसान दुनिया की रुकावटों, जमाने की बातों और माशरती बंदिशों से बेनियाज हो जाता है। प्यार करने वाले दुनिया से नहीं डरते क्योंकि उनके दिल में यकीन होता है कि मोहब्बत रब की अता है। वो जानते हैं कि दुनिया की मुखालिफत वक्ती है मगर मोहब्बत की रोशनी हमेशा बाकी रहती है।

कहो ना प्यार है, इस फिल्म का गीत आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम।

0: दिल फिल्म से लिया गया गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz।
1: FM रेनबो 101.9।
0: दोस्तों, प्यार में दिल उसी को दिया जाता है जिससे मोहब्बत या कहें प्यार होता है। दिल एक आम चीज़ नहीं बल्कि इंसान की असल हकीकत है। जब दिल किसी को दिया जाता है तो उसका मतलब है कि मोहब्बत अपनी इंतहा को पहुंच गई है। इसीलिए कहा जाता है कि दिल और प्यार अलग नहीं, दिल जिसके पास है प्यार भी उसके साथ है।

कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में फूल और कांटे फिल्म से लिया गया गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग। नायरंग में गीत सुरीले गाते जा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और जिसमें आप सुन रहे हैं सुरीले गीत। दोस्तों, मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये किसी पैमाने में नहीं समाती। जब दिल में मोहब्बत उतरती है तो ना कोई हद बाकी रहती है ना कोई हिसाब। ये एक ऐसा दरिया है जो बहता चला जाता है और जिसके सामने दुनिया की सारी गिनतियाँ और पैमाइशें बेमायने हो जाती हैं। मोहब्बत जब आती है तो इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ये ना वक्त देखती है ना हालात, ये बेहद होती है क्योंकि दिल की वसअत का कोई रोक नहीं होता और ये बेहिसाब होती है क्योंकि मोहब्बत का कोई हिसाब किताब नहीं होता, ये सिर्फ दिल की जुबान जानती है। यूं कहा जा सकता है कि प्यार जब आता है तो बेहद और बेहिसाब आता है।

0: पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में दयावान फिल्म से लिया गया गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz। इसी तरह के गीत सुरीले आप सुन सकते हैं गीत सुरीले गाते जा प्रोग्राम में, जो हर शब नश्र होता है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz पर। सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद और सुनते रहिए प्रोग्राम नैरंग, जिसमें पेश होता रहता है, जिसका नाम है गीत सुरीले गाते जा और जिसमें आप सुनते हैं सुरीले गीत।
1: FM Rainbow 101.9।
0: दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसा दरिया है जिसे रोकने की कोशिश की जाए तो वो और भी ज़ोर से बहने लगता है। जब प्यार पर पहरा होता है, यानी रुकावटें, मुखालिफतें या दुनिया की पाबंदियां सामने आती हैं, तो दिल और ज़्यादा शिद्दत से, ज़्यादा शिद्दत के महबूब को, मोहब्बत को महसूस करता है। यही पहरा मोहब्बत को

अनुराधा पौडवाल और उनके साथियों की आवाज़ों में सड़क फिल्म से लिया गया गीत आपने सुना। गीत सुरीले गाते जा इस सिलसिले के तहत कुछ मेरी पसंद के फिल्मी नगमे पेश किए जा रहे हैं। प्रोग्राम है नए रंग और आपने ट्यून किया है FM 101.9 MHz आकाशवाणी हैदराबाद। सुनते रहिए है। दोस्तों, प्यार मोहब्बत एक ऐसी क़ुव्वत है जो दिल को बहादुर बना देती है। जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं वो दुनिया के खौफ, ज़माने की बातों और रुकावटों से बेनियाज हो जाते हैं। दरअसल मोहब्बत इंसान को इतना मज़बूत कर देती है कि वो हर मुश्किल का सामना कर लेता है। जो डरते हैं वो प्यार करते ही नहीं, क्योंकि मोहब्बत में खौफ की कोई जगह नहीं। मोहब्बत एतमाद है, कुर्बानी है और दिल की गहराइयों से निकलने वाला यकीन है। जब दिल किसी को चाह लेता है तो फिर दुनिया की मुखालिफत भी कमज़ोर पड़ जाती है। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, ज़माने की बातों से वो झुकते नहीं। जो दिल में इश्क का चिराग जला लें, अंधेरों के खौफ से वो बुझते नहीं।

फिल्म हीरो से लिया गया गीत आपने सुना। दोस्तों, प्यार एक ऐसा जज्बा है जो सिर्फ दिल में नहीं आंखों में भी झलकता है। जब मोहब्बत से किसी की तरफ देखा जाए तो वह नज़र खुद ब खुद प्यार को जन्म देती है। आंखों की जुबान दिल की जुबान से ज़्यादा सच्ची होती है और एक मोहब्बत भरी निगाह कभी कभी हजार लफ्ज़ों से ज़्यादा असर रखती है। प्यार से देखना दरअसल दिल की रोशनी को आँखों के रास्ते जाहिर करना है। ये नज़र महबूब को यकीन दिलाती है कि चाहत सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में है। यूँ कहा जा सकता है कि मोहब्बत की पहली दस्तक अक्सर आँखों के ज़रिए ही

फिल्म चाहत से लिया गया गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग। नायरंग प्रोग्राम में गीत सुरीले गाते जा, ये सिलसिले के तहत हम सुरीले नगमे पेश कर रहे हैं और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz। दोस्तों, जिंदगी की असल खूबसूरती मोहब्बत प्यार में छुपी है। हर दिल चाहे वो खुशी में हो या गम में, मोहब्बत का कोई ना कोई तराना जरूर गाता है। ये गीत कभी मुस्कुराहट की सूरत में होता है, कभी दुआ की सूरत में, और कभी कुर्बानी की सूरत में। जिंदगी प्यार का गीत है, क्योंकि मोहब्बत ही वो जज्बा है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है। ये गीत हर दिल में बजता है, चाहे वो खामोश हो या बुलंद आवाज़ में। मोहब्बत प्यार के बग़ैर ज़िंदगी एक खाली साज है, और मोहब्बत के साथ ये साज अपनी असल धुन पाता है। ज़िंदगी है प्यार का गीत, हर दिल उसे गाता है। मोहब्बत की धुन में सुकून हर लम्हा संभालता है। बग़ैर चाहत के ये सफ़र अधूरा सा लगता है, मोहब्बत के संग ये जहां हकीकत में जीता है।

0: लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म सौतन में। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग।
1: FM रेनबो 101.9।
0: दोस्तों, जब प्यार मोहब्बत किसी से हो जाती है, प्यार हो जाता है, तो इनकार की कोई गुंजाइश नहीं होती। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दिल पर काबिज हो जाता है। जब दिल किसी को चाह लेता है तो फिर इनकार की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। इनकार दरअसल दिल की हकीकत को छुपाने की कोशिश है, मगर सच्चा प्यार छिपता नहीं, वो तो आँखों, लहजों और खामोशियों में भी जाहिर हो जाता है। प्यार हो जाए तो इनकार मुमकिन नहीं, क्योंकि मोहब्बत इंसान को बेख्तियार कर देती है। ये दिल की ज़ुबान है और दिल की ज़ुबान को झुठलाया नहीं जा सकता। इनकार सिर्फ लफ्ज़ों में होता है, मगर दिल हमेशा इकरार करता है।

लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का नगमा आपने सुना। इसी गीत पर सामाईन गीत सुरीले गाते जा का सिलसिला अब यहीं पर थमता है। हम उम्मीद करते हैं कि प्यार और मोहब्बत पर सुनवाए गए ये गीत आपके

दिलों को छू गए होंगे, क्योंकि मोहब्बत वो नगमा है जो हर दिल में बजता है, और जब ये नगमा सुनने वालों तक पहुंचता है तो दिलों को खरीब कर देता है। मोहब्बत के गीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, ये दिल को जगाने, रिश्तों को जोड़ने और ज़िंदगी को खुशबू से भरने के लिए होते हैं। सुनते रहिए हमारा ये प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा, जो हर शब नश्र होता है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz पर। प्रोग्राम नयरंग का इख्तिताम हो सामाइन, आइए सुनते हैं पयाम शब। तहरीर व पेशकश है जनाब नदीम अख्तर ज़ैदी की।

0: किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। हर नाराजगी को दुनिया के सामने लाना जरूरी नहीं, बाज बातें आपस में हल करना बेहतर होता है। वक्त गुस्सा या अना की वजह से रिश्ते को मुकम्मल तौर पर तोड़ देना दानिशमंदी नहीं। खामोशी या दूरी मसाइल को बढ़ाती है, जबकि बातचीत उन्हें कम करती है। दुनिया के लिए दिखावा जरूरी नहीं, मगर रिश्ते को बचाने के लिए संजीदगी जरूरी है। जिंदगी में असल हिकमत यह है कि रिश्तों को अना की भेंट न चढ़ाएं। अगर दिल में शिकवा है तो इसे खत्म करने की कोशिश करें, ना कि फासले बढ़ाने की।
1: पयाम शब आपने सुना। पेशकश थी जनाब सैयद नदीम अख्तर जैदी की। इसी के साथ सामाइन, उर्दू प्रोग्राम नए रंग अब अपने अख्तिताम को पहुंचता है। हमारी आपसे दोबारा मुलाकात होगी कल शब। आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz पर 9:30 पर। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। शब बखैर, आदाब।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर। स्टूडियो सी घड़ी में 10:59, यानी कि 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: होल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी।

0: 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera Semi-High-Speed Double Line Project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership.

बिल्कुल गजब नहीं करते हैं, एक बार फिर से आ चुके हैं आपसे ही मिलने, आपको ही प्यारे प्यारे गीत सुनाने के लिए। जी हाँ, गीत मेरे मनमीत में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूँ आपके साथ रितिका।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

तो दोस्तों, गीत मेरे मन मीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपये प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2026

0: 2027 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को किसानों की आय बढ़ाने, खेती को अधिक लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिजोरम में 189 करोड़ रुपए के मिजोरम अदरक मिशन की शुरुआत की। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहुमा भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा है कि ये मिशन कृषि, ग्रामीण विकास और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालयों की योजनाओं के साथ मिलकर शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नई सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, एक गुरुग्राम से और एक व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने कल ये मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 3 विकेट पर 161 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesame. He said for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested 5 accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The 5 accused persons in the case, 3 from Jaipur, 1 from Gurugram

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुरुआत बहुत ही बेहतरीन गीत के साथ।

तेरे बगैर जीने में रखा क्या है, तेरे बगैर जीने में रखा क्या है, तू नहीं तो दुनिया में रखा क्या है, और तुमसे बिछड़ कर भी जिंदा रहना, इससे बड़ी मेरे लिए सजा क्या है।

बिन तेरे कुछ भी नहीं जिंदगी मेरी, बिन तेरे कुछ भी नहीं जिंदगी मेरी, आ दो पल पास बैठ कर मेरे, कर दे पूरी जिंदगी की घड़ी। वैसे मुकम्मल ना हुई ये जमीन, ना मुकम्मल हुआ ये आसमां, अधूरा तेरे बिना सारा कारवां, तेरे बिना कुछ भी नहीं जिंदगी मेरी, तेरे बिन तो ये बूंदे बारिश की भी कुछ नहीं।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

दोस्तों, समय हुआ है 12:31 और 5 सेकंड। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है निशिगंधा और मैं हूँ आपके साथ अंजू।

तुम्हारे सिवा इस दिल को कहां कुछ और चाहिए। ख्वाब हो या हो हकीकत, मुझे तो बस तुम ही चाहिए। जो तुम मिल जाओ जिंदगी में, तो फिर इस जिंदगी से कहां कुछ और चाहिए।

नजर करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं। नजर करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, और ना देख गैरों को इतना कि मैं इश्क के जहर की आदी हो जाऊं।

तुम्हें क्या पता कि जब भी उठती हैं निगाहें उनकी, इस दिल में एक हलचल सी मच जाती है। बिना कहे कुछ वो सब कुछ कह जाते हैं और हमारी धड़कन यूं ही बस थम जाती है।

फूलों से कहो कि वो महफिल सजाएं, फूलों से कहो कि वो महफिल सजाएं, मेरे दिलबर की राहों को महकाएं। जिंदगी में बहार आई है उनके आने से, और इन धड़कनों से कहो कि वो जरा धीरे गाएं।

सभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 1:10 पर फिर से आपसे मिलेंगे गीत सुहाने लेकर। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपये प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रूपये की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को किसानों की आय बढ़ाने, खेती को अधिक लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नई सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है।

सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी

समय हुआ एक बज कर 11 मिनट और 6 सेकंड। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं गीत सुहाने, जिस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अपने बहुत ही मधुर गीत। रहेगा मेरा यानी अंजू का साथ और उम्मीद करती हूं कि ये सफ़र बहुत अच्छा गुजरेगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

तेरी यादों में खोकर मेरी रातें और भी सुहानी हो जाती हैं। तेरी यादों में खोकर मेरी रातें और भी सुहानी हो जाती हैं। चांद के नीचे बैठकर आज मैंने फिर से तुझे याद किया।

तेरी मेरी प्रेम कहानी खामोशी में ही लिखी गई। तेरी मेरी प्रेम कहानी खामोशी में ही लिखी गई। नजरों ने जो बात कही वो जुबान से ना कही गई। तेरे साथ हर लम्हा जैसे एक इबादत सा लगता है, और तेरी एक मुस्कान में ही मेरी पूरी जिंदगी संवर गई।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

बेचैन इस कदर था कि सोया ना रात भर, बेचैन इस कदर था कि सोया ना रात भर, पलकों से लिख रहा था तेरा नाम चांद पर।

देख लेना, न छोड़ेंगे कभी साथ तुम्हारा, साया बनकर साथ चलेंगे हम, धूप हो या घना अंधेरा, हर हाल में संग रहेंगे हम।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी ये थे। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 2:10 पर। फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी

0: खरीफ के क्रॉप से है, उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने केंद्र सरकार से मेडिकल कार्यक्रमों में नीट आधारित प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने और राज्यों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दाखिला देने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का भी हवाला दिया। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नई सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आलू, प्याज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved increase in minimum support prices for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnav said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP.

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 8 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं हूँ आपके साथ एक बार फिर से अंजू, लेकर आई हूँ बहुत ही मधुर और सुरीले गीत। रहिए इस सफ़र में मेरे साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, और ना हो निगाह में शोखी तो फिर ये दिलबरी क्या है।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

देखो तो जरा इस तारों की बारात को, सजाया है खुदा ने इस रात को। मेरा दिल तुझसे बस यही कहता है कि कभी खोना मत इस साथ को।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। भारती लेकर आएंगे कार्यक्रम हमराही। मुझे अनुमति दीजिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने केंद्र सरकार से मेडिकल पाठ्यक्रमों में नीट आधारित प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने और राज्यों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दाखिला देने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का भी हवाला दिया। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद आज 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित करेगी। परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से नतीजे देख सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को

समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की, लेकिन आप सबका मैं प्यार भरा स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमराही में। पहला गीत सुनते हैं फिल्म पुकार से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। शुरुआत ही कर लेते हैं इस कार्यक्रम इस प्यारे से गीत के साथ।

किस्मत की बाजी में छुपे एहसास जैसे दिल को ये यकीन दिलाते हैं कि सच्चा प्यार हर हाल में अपना रास्ता बना ही लेता है।

प्यार क्या होता है, प्यार क्या होता है, इस सवाल में वही मासूम बेचैनी है जब दिल पहली बार किसी के लिए धड़कना सीखता है।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

प्यार में मीठी शरारतें रिश्तों में हंसी और मोहब्बत के रंग भर देती है, और यही शरारतें रिश्ते को और गहरा बना भी देती हैं।

सर से सर के चुनरिया, जैसे चांदनी रात में किसी की धीमी सी मुस्कान दिल पर हल्की हल्की दस्तक दे रही हो।

चांद और तारों की चमक, चांद और तारों की चमक यही कहती है कि जब साथ अपनों का हो तो पूरी दुनिया भी किसी खूबसूरत ख्वाब जैसी लगने लगती है।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, 4:10 पर हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए आपसे ले रही हूँ अनुमति, और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए

0: खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद आज 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित करेगी। परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से नतीजे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 60 गेंदों में नाबाद 105 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved increase in

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ कार्यक्रम अरुणिमा में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारी सी गीत के साथ। गीत है फिल्म पायल की झनकार से सुलक्षणा पंडित और यशुदास की आवाज़ में। गीतकार राजकमल, संगीतकार माया गोविंद।

इस गीत के गीतकार SH बिहारी और संगीतकार OP नायर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम है अरुणिमा। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म सत्ते पे सत्ता से आशा भोसले, किशोर कुमार, बासु, RD बर्मन, भूपेंद्र सिंह और स्वपन चक्रवर्ती की आवाज में। गीतकार गुलशन बाबरा और संगीतकार राज NCP।

0: अटक गया
1: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
2: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
3: दुखी बेदुखी हो।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम है अरुणिमा अरुणिमा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुनते हैं अगला गीत फिल्म दोस्ताना से मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और अब आपको छोड़े जा रही हूँ कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति के साथ, और यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, 5:10 पर फिर से मुलाकात होगी प्रोग्राम भोर सुहानी में। तब तक के लिए आनंद लीजिए इस लास्ट जो हमारी प्रस्तुति है उसका, जिसको अपनी आवाज़ से सजाया है अनुराधा पोटवाल ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाईस्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाईस्पीड डबल लाइन परियोजना

देश की रेल संपर्क यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। असम सरकार इस महीने की 26 तारीख को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया को ये जानकारी दी। श्री सरमा ने कहा कि असम विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। उन्होंने बताया कि सत्र के अंतिम दिन यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करेंगे, जिसके लिए वे कल अबुधाबी पहुंचेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री की ये यात्रा कल से इस महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ जारी युद्ध के दौरान संयुक्त अरब अमीरात की गुप्त यात्रा की और वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इसकी पुष्टि आज उनके कार्यालय ने की। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार नेतन्याहू ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। बयान में कहा गया है कि इस बैठक से इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। हालांकि इस प्रगति से जुड़े किसी विशेष विवरण का खुलासा नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट खोकर मुकाबला जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंदों पर नाबाद 105 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग सिंग टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क की अमाली शूल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियनशिप किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो किन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved increase in minimum support prices for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce.
1: किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया
2: अ मेजर डिसीजन वॉज टेकन फॉर फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप द एमएसपी हैज बीन फिक्स्ड एट कॉस्ट प्लस 50% और इवन हायर विद दिस डिसीजन फार्मर्स विल रिसीव अ टोटल पे आउट ऑफ 2,60,000 crore rupees द एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट फॉर दिस ईयर विल बी 824 लाख मेट्रिक टन
1: खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और समय हो गया है प्रोग्राम भोज।

0: कभी कभी दिल का दीवाना हो जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि सपनों की उड़ान वहीं से शुरू होती है जहां उम्मीदें मुस्कुराना सीख जाती हैं।
1: टिक टिक टिक टिक टिक टिक।

फूल हमें सिखाते हैं मुस्कुराना, हालातों पर नहीं, अपने स्वभाव पर निर्भर करता है। खुशबू बांटते रहिए, दुनिया अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी।